0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 8 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का, भव्या पांडे के साथ. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. आज के मदर्स डे स्पेशल शो में हम SBS हिंदी पर पहली बार एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ हम लेंगे आपके सवाल लाइव ऑन एयर. बताऊंगी आपको पूरी बात, लेकिन आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं, जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो अगले एक घंटे तक कहीं मत जाइए, क्योंकि आपका मन पसंदीदा शो लेकर आया है खबरों, खास चर्चाओं, दिलचस्प बातचीत और शानदार संगीत का जबरदस्त संगम. सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर और जानेंगे भारत से जुड़े अहम अपडेट्स. आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीरिया से लौटे उस समूह को लेकर जिसने कई साल एक डिटेंशन कैंप में बिताए थे. इस वापसी के बाद ऑस्ट्रेलिया में 3 महिलाओं की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है. क्या है पूरा मामला, जल्द बताऊंगी. क्योंकि मदर्स डे बस आने वाला है, आज का हमारा शो होने वाला है बेहद खास. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर पूर्वा गुलियानी, जो प्रीति जब्बल के साथ करेंगी मदर्स और बच्चों की सेहत पर एक बेहद उपयोगी और दिलचस्प चर्चा. और आज खास बात यह है कि सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, आप सीधा फोन करके भी पूछ सकते हैं अपने सवाल. जी हाँ, चाहे बात हो न्यूट्रिशन की, नई मदर्स की देखभाल की, शिशु आहार की या किसी भी हेल्थ से जुड़े मुद्दे की, डॉक्टर पूर्वा देंगे आपके सवालों का जवाब लाइव ऑन एयर. नंबर जल्दी से नोट कर लें, 1300-799-767. इसके अलावा ढेर सारी बातचीत करेंगे, आपकी राय, आपके मैसेजेस और मौका आपकी आवाज को रेडियो पर सुनने का. कोशिश करूंगी कि शो के अंत में कुछ बढ़िया से गाने भी आपके लिए लेकर आ सकूं. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना शो ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की खबरों के साथ.

प्रस्तुत है 8 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। आज की बड़ी सुर्खियों में है फेडरल बजट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ऑस्ट्रेलिया में सीरिया से लौटे समूह को लेकर बड़ी कार्रवाई तक की खबरें। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नए बजट में करीब $64 अरब की बचत का अनुमान लगाया है। ऐसे में ट्रेजर जिम चार्मर्स का कहना है कि ये फैसला वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता यानी इंस्टेबिलिटी को देखते हुए लिया गया है। इस बचत का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब $34 अरब NDIS सुधारों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, बाहरी लेबर खर्च और अन्य खर्चों में भी कटौती की जाएगी। जिम चार्मर्स ने कहा है कि सरकार का फोकस अब चार बड़े क्षेत्रों पर होगा, फ्यूल सिक्योरिटी, महंगाई और हाउसिंग प्रेशर, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और टैक्स सुधार। उन्होंने सुपर एनुएशन परफॉर्मेंस टेस्ट में भी बदलाव की बात कही है, हालांकि मौजूदा सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका के 14 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में कुछ ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं जिन्हें अमेरिकी सेना पर हमलों से जोड़ा गया है। वहीं गाजा में स्थिति और गंभीर हो गई है। इजरायली हवाई हमलों में हमास के मुख्य वार्ताकार के बेटे की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि ये हमला उस समय हुआ जब हमास नेतृत्व मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम को बनाए रखने पर बातचीत कर रहा था। ऐसे में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संघर्ष विराम यानी सीजफायर के बाद से अब तक 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इसराइल का कहना है कि इस दौरान उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरिया से लौटी 3 महिलाओं को गंभीर आरोपों में अदालत में पेश किया जाएगा। इन महिलाओं पर मानवता के खिलाफ अपराध, गुलामी और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि ये समूह हाल ही में सीरिया से ऑस्ट्रेलिया लौटा है और इसमें महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं।

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Flash. दोस्तों, इस आने वाले अंश में हम बात करेंगे सीरिया से लौटे उस समूह के बारे में जिसने कई साल एक डिटेंशन कैंप में बिताए थे। इस वापसी के बाद ऑस्ट्रेलिया में तीन महिलाओं की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित माहौल में समाज में दोबारा जोड़ा जाए। क्या है पूरी मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीरिया से लौटे उन ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को लेकर जिनके संबंध सेल्फ प्रोक्लेम्ड आईएस समूह से बताए जा रहे हैं। सीरिया के एक डिटेंशन कैंप में वर्षों बिताने के बाद महिलाओं और बच्चों का ये समूह ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, जहां पहुंचते ही तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अधिकारियों का कहना है कि उनका मुख्य फोकस बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और उन्हें समाज में दोबारा शामिल करने पर है। इस्लामिक स्टेट ग्रुप से संबंध रखने वाली तीन ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं सीरिया से लौटने के बाद गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। ये महिलाएं उन ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के समूह के साथ लौटी हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और जिनके संबंध सेल्फ प्रोक्लेम्ड आईएस ग्रुप से बताए जा रहे हैं। विक्टोरिया की 53 और 31 वर्षीय दो महिलाओं पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कथित तौर पर सीरिया में एनस्लेवमेंट यानी गुलामी से जुड़े अपराध भी शामिल हैं। दोनों महिलाओं को कई आरोपों के तहत अदालत में पेश किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम 25 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं 32 वर्षीय एक महिला को सिडनी में गिरफ्तार किया गया है। इस महिला पर घोषित संघर्ष क्षेत्र में प्रवेश करने और वहां रहने के साथ साथ आईसिस में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि इन दोनों आरोपों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में एएफपी असिस्टेंट कमिश्नर काउंटर टेररिज्म स्टीफन नट का कहना है कि ये आरोप कई वर्षों की जांच और पुलिस कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं।
6: ऑपरेशनल प्लानिंग फॉर दीज मैटर्स स्टार्टेड इन 2015। All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
5: इस हफ्ते की शुरुआत में फेडरल सरकार ने पुष्टि की थी कि इस ग्रुप ने अपनी उड़ानों की बुकिंग कर ली है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने दोहराया था कि सरकार उनकी वापसी में कोई भूमिका नहीं निभाएगी।
7: The government has not and will not provide any assistance to this group. These are people who have made what is a horrific choice to join a dangerous terrorist organization and to place their children in an extraordinary situation.
5: इन महिलाओं को अक्सर आईसिस ब्राइड्स कहा जाता है क्योंकि उनके कथित या वास्तविक संबंध सीरिया में आईएस समूह के फाइटर्स से रहे हैं। 2019 में सीरिया में आईएस ग्रुप के पतन के बाद से ये महिलाएं उत्तरी सीरिया के अल रोज डिटेंशन कैंप में रह रही थीं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने चिंता जताई है कि लौट रही महिलाएं और बच्चे संभावित सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। वहीं नेशनल सीनेटर ब्रिजिट मैकेंजी ने 9 न्यूज के टुडे शो में कहा है कि सरकार को उनकी वापसी रद्द कर देनी चाहिए थी।
8: There are serious concerns about this cohort of women who left Australia to raise their children under Sharia law to actually set up an Islamic caliphate. Now that mission has failed, they're wanting to return, and I want to know why the government hasn't cancelled their travel documents on national security grounds.
5: हालांकि गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होने के कारण सरकार के पास उनकी वापसी रोकने के लिए बहुत सीमित रास्ते मौजूद थे।
9: There are very serious limits on what can be done with respect to preventing a citizen of a country returning to their country. The legal threshold that we have is with respect to temporary exclusion orders. I have received advice in one instance so far of that threshold having been met, and when I received that advice, I acted immediately, and that exclusion order remains in place.
5: आपको बता दूं कि अधिकारियों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया

0: है कि बच्चों के साथ आगे क्या होगा। इनमें से कई बच्चे ऐसे कैंपों में पैदा हुए हैं जहां हालात बेहद खराब थे और एक्सट्रीमिज्म यानी चरमपंथी समूह सक्रिय थे। माना जा रहा है कि इन बच्चों को ऑस्ट्रेलियाई समाज में दोबारा शामिल होने के लिए विशेष सहायता की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एएफपी कमिश्नर क्रिसी बैरेट का कहना है कि इनमें से कुछ बच्चों को डी रेडिकलाइजेशन सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस मुद्दे पर स्वतंत्र सीनेटर डेविड पकॉक ने नाइन टुडे शो में कहा कि बच्चों को उनके माता पिता के फैसलों की सजा नहीं मिलनी चाहिए।
1: But I think the thing that we really have to distinguish here is between grown adults and children who have had no say in going overseas. And surely we want them back here in Australia where they can both face the full force of the law and also be de-radicalized rather than over somewhere else in the world where they can be radicalized and at some later date come back. So I've found the whole debate, particularly around the children, really, really disappointing. These are Australian citizens and yes, we can absolutely hold them to account, but Australian children deserve a second chance.
0: वहीं शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर का कहना है कि सरकार को आईएस ग्रुप के समर्थकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन बच्चे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और हर परिवार की स्थिति अलग है।
2: Children don't get to pick who their parents are, and these children have seen things that no child should ever have to see, and the trauma that they have experienced will be with them for some time. And that is why the work that the federal police will do and need to do is so important.
0: SBS News के लिए सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ब्रेक से पहले हमने नजर डाली आज की खबरों पर और एक खास रिपोर्ट हम आप तक लेकर आए जहां हमने आपको बताया कि कैसे सीरिया से लौटी दो महिलाएं और बच्चों पर ऑस्ट्रेलियाई समाज में समावेशन यानी इंक्लूजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। वैसे तो मैं जानती हूं आप हमारा कोई भी शो मिस नहीं करते हैं और आपके संदेश भी हम तक आ रहे हैं, लेकिन यदि आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर और हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया की कई सारी खबरें अलग अंदाज में आप तक लेकर आते हैं, वहां पर आपको हमारे सभी कार्यक्रम और अंश फिर से सुनने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं खबरें भारत से।
6: भारत ने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को कानून के तहत वापस भेजा जाएगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इसको लेकर द्विपक्षीय व्यवस्था बनी हुई है। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएगा ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी सुचारू रूप से हो सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस बारे में कहते हैं,
7: 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। कई एक सारे मामलों में ये 5 साल से ज़्यादा लंबित हैं। हमारा जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे।
6: कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने भारत पर हस्तक्षेप और जासूसी के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को भारत ने बेबुनियाद बताया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है।
8: We categorically reject such baseless imputations. India is a democracy that adheres to international norms and respects sovereignty of other nation. It is not our policy to interfere in issues of other countries. We believe that any concerns of this nature should be addressed through established mechanisms rather than through politicized or public narratives.
6: उल्लेखनीय है कि अपनी नवीनतम रिपोर्ट में CSIS ने भारत सहित चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और जासूसी के आरोप लगाए हैं। और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया। चुनाव में सत्ताधारी TMC को हार का सामना करना पड़ा था जबकि भाजपा को 2/3 बहुमत हासिल हुआ है। ममता बनर्जी ने धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब विधानसभा भंग होने के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा विधायक दल की आज बैठक होनी है। शनिवार को नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की संभावना है। इधर ममता बनर्जी ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। विपक्षी दलों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी की सराहना करते हुए अखिलेश ने कहा,
9: आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती है।
6: चुनाव में बड़े पैमाने पर

0: धांधली का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव कहते हैं,
1: सुनने में तो ये भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे, और आप यकीन करना, देख लेना आप जो जो यहाँ से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको।
0: मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 9 तारीख को शपथ के बाद कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सुधार की बात कहते हुए उन्होंने कहा,
2: और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का काम करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था।
0: चुनाव के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा हुई है। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सहायक की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। इसकी वजह को लेकर शुभेंदु कहते हैं,
2: एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है।
0: इस हत्या को दर्दनाक बताते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा,
3: इसका मतलब बंगाल जहां थे वहीं है, सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली।
0: तमिलनाडु में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवी के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। 234 सीटों वाली विधानसभा में उसके 108 विधायक हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद बहुमत के लिए उसे 5 और विधायकों की जरूरत है। राज्यपाल आरवी आरलेकर ने टीवी के प्रमुख विजय से 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई दलों ने सवाल उठाया है। इस बीच सरकार बनाने को लेकर डीएमके और एआईडीएमके के गठबंधन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इधर डीएमके ने एक प्रस्ताव पारित कर अपने अध्यक्ष एमके स्टालिन को कोई भी फैसला लेने की छूट दे दी है। और अब चर्चा बिहार की, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। गुरुवार को 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की रही। उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान ने निशांत को लेकर कहा,
4: निशांत जी आए हैं, नई जिम्मेदारी उनको मिली है, मैं मानता हूं कि उससे जरूर बिहार को आगे बढ़ने में लाभ मिलेगा।
0: मंत्रिमंडल विस्तार को संतुलित बताते हुए हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं,
5: सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है, और बुजुर्ग और नौजवान सबका संतुलन बना करके आगे बिहार इसी से प्रचलित होता है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। आगे चलकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
6: तो दोस्तों, ये आपने सुनी खबरें भारत से। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज SBS हिंदी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, जो कि हैं एक बहुत ही जानी मानी डाइटिशियन। पूर्वा जी आज हमारे साथ हैं और मदर्स डे के इस मौके पर आपके खूब सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। तो जल्दी से अपने फोन उठाएं और हमें 1300-799-767 पर भेज दें कोई भी सवाल जो कि आप उनसे पूछना चाहते हैं रेडियो पर। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, लौटकर जल्द वापस आऊंगी।
7: Ready to order?
8: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे Facebook पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी Facebook पर भी है.
3: तो दोस्तों SBS हिंदी के खास मदर्स डे टॉक बैक पर आपका स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. कुछ दिन पहले सरकार ने महिला स्वास्थ्य पैकेज का अपडेट जारी किया था. इसमें बताया गया कि 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को सस्ती गर्भ निरोध

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: स्टूडियो में है डाइटिशियन पूर्वा गुलियानी और SBS हिंदी से प्रीति जब्बल और आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों पर बातचीत की जाएगी. सबसे खास बात आपको बता दूं, ये आपकी कॉल इन बातचीत है, यानी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अभी तैयार हो जाइए और हमें कॉल कीजिए 1300-799-767 पर. आपका सवाल सीधा लाइव कॉल के जरिए हम देखेंगे और उसका जवाब आप तक लेकर आएंगे. तो चलिए करते हैं ये खास टॉकबैक शुरू.
2: नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जब्बल. स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव है सही पोषण, सही देखभाल और ढेर सारा प्यार. SBS हिंदी के मदर्स डे स्पेशल टॉकबैक में आपका स्वागत है. मदर्स डे से ठीक पहले आज हमने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं, नई मदर्स, व्यस्त यानी कि बिजी मॉम्स की सेहत, डाइट और न्यूट्रिशन पर बात करेंगी. तो बिना देर किए स्वागत करते हैं डाइटिशियन पूर्वा गुलियानी का जो आपके सवालों के जवाब देंगी. आपको बता दें कि पूर्वा डाइट यम की डायरेक्टर हैं और सीनियर डाइटिशियन भी हैं और फिलहाल लाट्रोब यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं. तो पूर्वा, SBS हिंदी के टॉक बैक में आपका तहे दिल से स्वागत है.
3: धन्यवाद प्रीति, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए.
2: हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ फोन आ रहे हैं, कुछ SMS के जरिए तो पहले से ही आ चुके हैं, तो आज इन्हीं पर बातचीत होगी. लेकिन इससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि चाहे आप खुद एक मॉम हैं या अपने घर की माँ या मदर इन लॉ का ख्याल रखते हैं, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर फोन करें 1-300-799-767 पर. मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1-300-799-767. आप जरूर फोन कीजिए और जल्दी से अपने सवाल पूछिए. तो कोशिश यही रहेगी कि आपके सवाल मदर्स के खान पान और डाइट से जुड़े रहें, क्योंकि मदर्स डे आने वाला है और हम चाहते हैं कि सभी मॉम्स की को अच्छी सेहत का तोहफा मिले. और आपको ये भी बता दें कि SBS हिंदी टॉकबैक में दी गई स्वास्थ्य और अन्य जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, यह व्यक्तिगत सलाह नहीं है. अपनी स्थिति के अनुसार सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ या अपने GP से बात करें. तो पूर्वा, शुरुआत करते हैं हार्मोन से. ये जो शब्द है बहुत चर्चा में है. हर उम्र की महिलाओं को हार्मोन्स की दिक्कत रहती है, चाहे वो 30 साल की हो या 70 साल की हो, 80 साल की हो. ऐसे में कौन सा खाना हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है और उसके असर को कम कर सकता है?
3: बिल्कुल, इसका जनता सोच रही होगी कि कोई ऐसा मैजिक आंसर दूंगी मैं या मैजिक पिल दूंगी, पर ऐसा नहीं है. जो सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि हमारे जो हार्मोन है वो हर स्टेज पे बदलते हैं, चाहे प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, पोस्टमार्टम है, पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, हम हर स्टेज पे हमारे चेंजेस आते हैं. कोई ऐसा मैजिक पिल नहीं है जो ये कहे कि उसको कोई फिक्स कर सकता है. क्या हम अपने हार्मोन हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं? जी जरूर, वो हम कर सकते हैं और उसके लिए एक वेल बैलेंस्ड राउंडेड डाइट का सबसे ज़्यादा रोल आता है. जैसे आपके प्रोटीन, प्रोटीन का इनटेक बहुत क्रूशल है हमारे इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में और फंक्शन में. और इसके अलावा एक गुड हेल्दी फैट, गुड फैट कंटेंट इज रियली इम्पॉर्टेंट, जो कि अच्छे सोर्सेज से आए, जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स है, सीड्स है. एंड देन मेनली हमारा कैल्शियम का इनटेक, विटामिन डी, विटामिन बी लेवल्स, ये सबको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आयरन एक बहुत ज़्यादा क्रूशल एक और न्यूट्रिएंट है जिसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए.
2: चलिए बहुत बढ़िया, और आपसे बात करते करते मैंने देखा बहुत सारी कॉल्स आ गई है. तो चलिए पहली कॉल

0: कॉल से शुरुआत करते हैं
1: जी
0: और बात करते हैं ये हमारे पहले कॉलर से। तो जरा नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जब्बल। मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: हाय प्रीति, माय नेम इज किश।
0: किश, नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। किश, आपका प्रश्न है बच्चे को लेकर। आप अपना प्रश्न पूछे पूछे, पूर्व यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड देंगी, आंसर देंगी, सवाल का जवाब देंगी।
1: बिल्कुल। हाय पूर्वा,
0: हाय।
1: ग्रेट। सो पूर्वा, मैं आई हैड माय बेबी अबाउट 5 वीक्स अगो एंड आई एम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग राइट नाउ। सो मुझे जानना था कि अभी मेरा बेबी काफी क्लस्टर फीडिंग कर रहा है, सो इट्स मेंटली एंड फिजिकली क्वाइट एग्जॉस्टिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंक्रीज माई मिल्क सप्लाई, बट मुझे जानना था कि मैं कैसे फूड्स और न्यूट्रिएंट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ जिससे दैट कैन हेल्प माई मिल्क सप्लाई राइट नाउ।
2: Perfect. First of all, I would like to say my congratulations. 5 weeks is such a beautiful period. और बहुत daunting भी हो सकता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। और स्पेसिफिकली अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं एक्सक्लूसिवली, तो वो बहुत मुश्किल भी रहता है। एंड कंग्रेचुलेशन ऑन दैट ऑल्सो।
1: थैंक यू सो
2: सो जहाँ
1: मच।
2: तक आपका न्यूट्रिशन का सवाल है, एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि बेबी को सब मिल जाएगा जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आपने अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो यू विल बी डिप्लीटेड बाय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड। ठीक है, तो उसके लिए हाइड्रेशन, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टाइम ऐसा होता है, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में वेदर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर फ्लूइड रिक्वायरमेंट। तो मेरा ये चीज बहुत जरूरी रहेगी कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, चाहे वो जीरे का पानी बोला है आपको मम्मी ने या मदर इन लॉ ने या अजवाइन का या मोटी इलायची का, तो वो सब पिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नंबर वन। नंबर टू, कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो मेकिंग श्योर कि आपकी डाइट के अंदर मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, ये जितने भी हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं कैल्शियम के, इनको जरूर अपनी डाइट में ऐड रखें। एंड तीसरा, जितने भी हमारे ग्लैटोगोन्स रहते हैं, जैसे हमारा मेथी हो गया एंड ओट्स हो गया एंड जितने भी हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस, पंजीरी अभी तक बनी है आपके लिए या नहीं बनी है?
1: बिल्कुल, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई उसी दिन तैयार था पूरा
2: बिल्कुल। एंड
1: डब्बा।
2: वो जो पंजीरी है उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो आज से नहीं, सदियों से हमारे लैक्टेटिंग मदर्स को नरिश करती आ रही हैं। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट कि नहीं मेरा वजन बढ़ जाएगा, मुझे नहीं खाना। इस टाइम पे ये चीजें सोचने की बिल्कुल नहीं है, इस टाइम सिर्फ अपने न्यूट्रिशन का और अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस।
1: No, absolutely. Thank you so much, Purva.
2: Thank you.
1: Appreciate your help.
2: Thank you.
0: Thank
2: All the best.
0: धन्यवाद किश, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। लेकिन हम चाहेंगे कि सवाल और जवाब थोड़ा छोटा रखें क्योंकि इतने सारे कॉल्स हैं, सभी को बात करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच किश।
1: थैंक यू।
0: बिजी मम की बात करते हैं पूर्वा। जब हम घर वापस आते हैं काम से तो इतनी जोर से भूख लगी होती है उस वक्त कि जब भी सामने जो नजर आता है फटाफट हम खा लेते हैं। तो ये तो कई मॉम्स के साथ होता है, तो ऐसे में क्या करें कि जल्दी से अनहेल्दी चीजें खाने से बचे और हमारी डाइट भी हेल्दी बनी रहे। पर इसको, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पार्क कर लें, इसकी गाड़ी को जरा 2 मिनट रखें क्योंकि हमारी कॉल आई है जो इसी किस्म का क्वेश्चन शायद पूछना चाहते हैं, तो हम उनसे सवाल करते हैं। और ये आ रहा है उनका,
3: हेलो
0: जी,
3: हेलो,
0: नमस्ते
3: नमस्ते
0: नमस्ते। आपका नाम?
3: मोनिका।
0: मोनिका, आप कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैं टेम्पल स्टोन लोअर मेलबर्न से।
0: चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी आवाज सुन के। आपका प्रश्न क्या है पूर्वा के लिए?
3: हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि बिजी मॉम के ऐसे रिलेटेड कि हम जैसे जगल करते हैं किड्स को, काम को, और बहुत कम नींद होती है। सो क्या टॉप 3 न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस मेक करेंगे इन एनर्जी, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ में, विदाउट मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ जो कि इजिली हो सकता है?
2: परफेक्ट। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हैबिट बोला, आई लव दैट, क्योंकि हैबिट एक ऐसी चीज है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यू हैव टू डेवलप गुड हैबिट्स. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत रिफ्रेशिंग लगा. अब सबसे जो जरूरी बात है और मेरी जो सबसे बड़ी हैबिट और टिप है वो ये है मील प्लानिंग. इफ यू प्लान राइट यू नेवर गो रॉन्ग, मैं हमेशा ये बोलती हूँ. तो आप अगर वीकेंड पे या थोड़ी देर वीक में एक आध दिन भी अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकती हैं और अपना प्लान कर सकती हैं मील्स को, और मील्स अगर रेडी हैं तो कितना इजी हो जाता है. रोज का जो ये सवाल है कि अब लंच में क्या खाना है, अब डिनर में क्या खाना है, उससे आपका जितना टाइम वेस्ट होता है सोचने में और फिर बनने में, तो उससे आप बचेंगे. तो थोड़ा सा मील प्लानिंग और प्रेपिंग के ऊपर जरूर ध्यान दें, वो एक बहुत जरूरी है. दूसरी चीज जरूरी ये है कि कुछ ईजी रेडी ऑप्शंस आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्विक ईजी मील बनाना है, तो हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम फ्रोजन वेजिटेबल्स ना इस्तेमाल करें. आई डोंट नो आप ये मानते हैं नहीं, या कैन हम ये नहीं यूज करें, पर फ्रोजन वेजिटेबल सो फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा टाइम सेवर है. और स्पेसिफिकली जब हम ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आते हैं जहाँ हमारे पास कोई सपोर्ट, कोई सब्जियां काटने के लिए नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, तो फ्रोजन वेजिटेबल्स आर स्नैप फ्रोजन, और उनका जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो बिल्कुल बराबर ही, इनफैक्ट थोड़ा बेटर ही पाया गया है देन द फ्रेश वंस. सो उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और वो आपका टाइम बहुत सेव करता है. और एटलीस्ट आप अपनी जो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है, सर्व है 5 serves ऑफ वेजिटेबल्स, वो पूरी मीट कर पाएंगी. और तीसरा ये है दैट डोंट स्किप मील्स, ये सबसे बड़ी चीज है. तो हैविंग ब्रेकफास्ट स्नैक, लंच एंड अ स्नैक एंड अ डिनर, क्योंकि जो शाम को, जैसे प्रीति जी ने भी पूछा था कि जो शाम को 4 बजे 5 बजे आके भूख लगती है हम और कुछ भी खा लेते हैं, तो वो उस टाइम से नहीं शुरू, वो पूरे दिन का पाइलअप है. आपने नाश्ते में सिर्फ चाय ले लिया, आपने कुछ स्नैक नहीं खाया, लंच छोटा मोटा कुछ कर लिया, तो उस तरीके से आप मिस आउट कर जाते हैं और आपको भूख लगती है. सो मेकिंग श्योर कि आप हर मील को अपना न्यूट्रिशियस बनाएं. हमारे लिए सिर्फ एक डिनर एक फोकस नहीं रहना चाहिए, वी नीड टू शिफ्ट दैट फोकस टू मेकिंग श्योर ऑल आर मील्स आर न्यूट्रिएंट डेंस एंड दे हैव द प्रोटीन, दे हैव द फाइबर और गुड फैट्स हर मील में हो, छोटा छोटा सिंपल. एंड मील प्लानिंग एंड प्रेपिंग वुड बी द की फॉर बिजी मॉम्स. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट.
0: थैंक यू मोनिका. दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं SBS हिंदी का मदर्स डे स्पेशल टॉकबैक. मदर्स डे पर अपनी माँ को सबसे अच्छा तोहफा देना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं सबसे जरूरी गिफ्ट की, जो है उनकी सेहत. आपके बहुत सारे सवाल हमें मैसेंजर, फेसबुक और SMS के जरिए आ रहे हैं, तो पर आपको बता दें कि हमारी फोन लाइन भी खुली हुई है आपके सवालों के लिए, तो हमें जरूर कॉल कीजिए 1-300-799-767 पर. एक SMS आया है जो मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देती हूँ. पूर्वा जी वो कह रहे हैं कि माई मदर इज 65 years old, शी इज डायबिटिक एंड हैज हाई कोलेस्ट्रॉल, बट शी स्टिल फास्ट ऑन एकादशी, आर दीज एनी थिंग्स दैट शी needs to know. ये कमल जी सिडनी से का इनका क्वेश्चन है.
2: सबसे पहले तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि ये मदर के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सो अप्रिशिएट दैट. और दूसरी चीज़ ये, एकादशी का फास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं खुद एकादशी का फास्ट रखती हूँ, इस साल से मैंने शुरू करा है. सो एकादशी का फास्ट एक 65 year old रख रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हमारा कंसेप्ट जो फास्ट के बाद या फास्ट वाले दिन जो खाने का कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, कि हम मेनली कार्ब हैवी डाइट के ऊपर फोकस करते हैं उस दिन. तो अगर वो अपनी डाइट के अंदर बैलेंस मेंटेन कर सकती हैं प्रोटीन का और फाइबर का, कि जैसे क्योंकि दूध अलाउड है, पनीर अलाउड है, और साथ में सब्जियां जो जो अलाउड हैं, जो जो वो ले सकती हैं, वो कार्ब्स के साथ अगर लें, और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा कभी फ्रूट ले लिया, कभी दही ले ली, कभी रायता बना लिया, सो वो भी एक बहुत अच्छा स्नैक या मील बन के रह सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. और जहां तक रही उनकी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की बात, अगर वो डायबिटीज से उनको लगता है कि जिस दिन वो फास्ट कर रही है उस दिन उनकी शुगर लेवल्स ऊपर नीचे जा रही हैं, तो वो एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली जिसको थोड़ा सा कंसर्न है, तो वो आपको प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए एक मेडिकल प्रोफेशनल दोबारा किसी इंडिविजुअली, वो हम अभी नहीं बता सकते, बट वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा क्योंकि वो डायबिटिक है, तो उस दिन उनकी शुगर लेवल ड्रॉप ना हो रही हो, बस उस चीज का ध्यान रखें.
0: चलिए उम्मीद है कमल जी आपके सवाल का जवाब मिल गया है आपको. चलिए कॉल आ रही है, वो भी सुन लेते हैं. नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जब्बल, कैसी हैं आप?
4: नमस्कार प्रीति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
0: जी कहिए, आज आपकी क्या सेवा की जा सकती है?
4: जी मेरा सवाल पूर्वी जी से ये है कि मैं पिछले 1 साल से मेनोपॉज में हूँ और मैंने 10 किलो वजन बढ़ा लिया है, और मुझे ये नहीं मालूम कि इसको लूज कैसे करना है, क्योंकि मेरी जॉब भी काफी स्ट्रेसफुल रहती है 9 to 5 एंड आई एम ऑल्सो ऑन अ वीगन डाइट. सो इफ शी कैन रिकमेंड मी कोई अच्छी वीगन डाइट दैट कैन हेल्प मी टुवर्ड्स वेट लॉस

0: वीगन डाइट एक इस सेशन में सब पूरा समझाना, तो आपका नाम नहीं बताया आपने।
1: सॉरी, मेरा नाम कोमल
0: है। कोमल, मतलब वीगन डाइट इस उसमें बताना तो बहुत मुश्किल है कि इतने शॉर्ट नोटिस में, बट मैं आपको दो तीन चीजें जरूर बताना चाहूंगी कि मेनोपॉज के बाद वेट लॉस होना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसके लिए आपका जो मेन फोकस है ना, इस टाइम हमें वेट से ज्यादा फोकस करना है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें जो और डिजीजेस मेनोपॉज के साथ आ सकती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। आप वीगन डाइट में हैं तो आपके लिए मेरे बहुत ज्यादा कंसर्न है। सबसे ज्यादा कंसर्न है मेरा कैल्शियम इनटेक का। आई एम नॉट श्योर आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। कोई नहीं ले रही तो कैल्शियम आपको आपकी डाइट में कहाँ से मिल रहा है आपको ये सोचना चाहिए। आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो ये और आप आयरन है, विटामिन B12 है, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ में ओवरऑल सपोर्ट करेंगे आपको फॉर अ लॉन्गर एंड अ हेल्दियर लाइफ इन फ्यूचर, क्योंकि बोन हेल्थ बहुत ज्यादा रिस्क पे रहती है और हार्ट हेल्थ भी। तो आई होप एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप किसी डाइटिशियन को जरूर दिखाएं और अपने लिए टेलर्ड इंडिविजुअल एडवाइस लें। आई एम वेरी सॉरी आई वोंट बी एबल टू गिव यू वेरी इंडिविजुअल एडवाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हियर, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, आप अपने आप को हर साल ब्लड टेस्ट का बर्थडे गिफ्ट जरूर दें। हम बहुत शाय अवे करते हैं, नॉट श्योर आपने अपने ब्लड टेस्ट कब करवाए हैं लास्ट, बट एवरी ईयर यू नीड टू गेट अ थरो न्यूट्रिशनल पैनल डन और अपने जीपी को ये चीज जरूर बताएं कि आप वीगन डाइट पे हैं, तो वो कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के भी टेस्ट कर सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स।
2: तो हमारे ऑडियंस जो सुन रही हैं, हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, आपको बता दिया जाए कि अपने आप को ब्लड टेस्ट का गिफ्ट दें जैसे पूर्वा ने कहा। तो दोस्तों अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। SBS हिंदी के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मदर्स, उनकी डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़े सवालों और जवाबों का सिलसिला हम लेकर फिर लौटेंगे कुछ ही मिनटों में। और ब्रेक के दौरान ये बिल्कुल सही मौका है, अगर हमारे कोई श्रोता डाइटिशियन पूर्वा गुलियानी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 1-300-799-767 पर।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second

दोस्तों आपको बता दूं कि इस खास बातचीत का जो पॉडकास्ट है और एक खास रील आपको जल्द SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर मिल जाएगी, तो आप ये जो सेगमेंट है ये फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज का ये जो खास अंश था, ये जो प्रोग्राम था, आपको कैसा लगा हमें लिख भेजें 04397997667 पर। साथ ही यदि ऐसा कोई भी टॉपिक है, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आप चाहते हैं कि हम स्टूडियो में किसी एक्सपर्ट को लेकर आएं जिनसे आप सवाल जवाब कर सकें, तो इस तरह के सुझाव भी आप हमें इसी नंबर पर लिख सकते हैं।

0: advertising.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: तो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा संदेश हमें आया है. लिखते हैं, हेलो एसपीएस हिंदी, इट वाज अ ग्रेट सेशन टुडे गिवन बाय डॉक्टर पूर्वा. आई वुड कंसिडर कॉन्टैक्टिंग अ डाइटिशियन फॉर अ टेलर्ड वीगन डाइट. साथ ही कह रहे हैं, थैंक यू एसपीएस हिंदी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू माय मदर्स हेल्थ. बेस्ट मदर्स डे प्रेजेंट. तो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो भी कॉल्स हमने उठाई थी उन्हीं में से ये एक कॉलर हैं. और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको एसपीएस हिंदी की ये जो नई पहल है ये पसंद आई है. चलिए इसी के साथ आज के लिए आप सभी से इजाजत लेती हूँ. एक बार फिर से आप सभी का एसपीएस हिंदी और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जल्द हमारी मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना पूरा सुन के जाएं.